0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी बात
1: जी
2: इट्स नाइस
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर

0: पंजाब सिंध जे
1: सिंजेंटा का रोशन कपास प्रोग्राम पाकिस्तान और किसान के रोशन कल और बेहतरीन कपास के हुसूल में हम कदम तमाम नया सवेरा स्टोर और नया सवेरा ऑनलाइन पर दस्तियाब है।
0: इरसा तर्जमान जो चवण है तो पंजाब पंजे हिस्से जो पानी न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ो है असा के कोई इतराज ना है। इरसा 2014 ईस्वी में ही न्यू जलालपुर कैनाल लाए एनओसी जारी कर चुकी हुई। 2014 ईस्वी में जलालपुर कैनाल की सिंध मुखालफत कई हुई बेन कई हुई। सिंध तकरारी कैनाल खिलाफ सीसीआई में भी आवाज उथारे हो। सिंध हुकूमत जो कैनाल खोलन मुनासिब ना है।

0: It's 9:30 AM. Time check is brought to you by
1: Minus host sari tensions. Pass Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: Okay, dard, patho ke khichao, kamar dard, ya.
3: Tri marham banane walon ki fakhriya peshkash.
2: Ajza se tayar karda.
3: Ye maasar jagah par tezi se
2: sozish se aaram pahunchati hai.
3: Aake jismani dard.
2: Varzish ke baad hone wali takleef.
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: yeah!

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: आप सुन रहे हैं,
3: आप सुन रहे हैं
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: भी
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब
4: GFM नेटवर्क पर KTM
5: प्रिया कुमारी समेत सिंध मां 20 खां वधीक अगवा ऐं गुम थियल जी बाज़ाबी लाइ बबलो बाईपास वटि कंडा ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफिक मुअतल बस वटि 22 ॾींहनि खां धरणो हणी वेठल प्रिया एक्शन कमेटी जे अॻवाननि वकीलनि सिविल सोसाइटी लाइ धरणे वारे हंधु पहुतो आराम ॿारनि जी बाज़ाबी ताईं धरणो ख़तम करण खां इनकार
6: और वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया है वो ये है शफाफियत इस निजाम में लाने के लिए ओबरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैन अल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और न सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप उसके पीछे वो कौन कौन से आंसर हैं जिनसे वो कीमत को वो भी लोग पता चले के ये को आए और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ में जरूर होगा पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत कि आज 70-80 साल के बाद भी पाकिस्तान अपने उसके जरिए भी खड़ी कर दी है कि अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो आप होगी
7: वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जा अघ रोज़ाने जी बुनियाद ते मुक़रर करण जो ऐलान करे छॾियो पेट्रोलियम वारे वज़ीर मलिक चयो आहे खां सवाइ आलमी क़ीमतनि मुताबिक़ तेल अघनि जो फ़ैसिलो कंदी आलमी सतह ते माण्हुनि खे कंहिं बि क़िस्म हटाइण चयो इहा आहे नई ज़रूरतनि खे पूरो कयो वियो
5: रोज़ाने जी बुनियाद ते तेल अघनि जूं क़ीमतूं मुक़रर खे रद्द करे छॾियो हड़ताल जी बि धमकी पाकिस्तान फ़ैसिलो मुल्क में हड़ताल कई वेंदी

0: नीम प्रिकली हीट सोप, गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप,
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज,
1: GFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, GFM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: टाइम चेक।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
4: फकीरी जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिर्फ दिन में 3 से 4 लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
0: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: हक सच जो FM 90

0: अपना शहर ना घर और मठिया
1: हक सच जो आवाज गीत जो आवाज पाक मटियारी FM 91 आवाज उधर

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GFM की आवाज,
3: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे।
1: जो आवाज हैदराबाद मटियारी सिंध जो दंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देख स्टैंड अप गर्ल बस से जो रात 8 बजे
1: क्यों मैं ग्रीन हूँ
2: FM 9X
3: ओ पिताई पिता ते बसे
2: जो आवाज
4: 5 AM
5: बैंकिंग के फरोग फाल किरदार के अस्करी
6: फकीरी नीड सोप जिसे बचाव का बेहतरीन
7: प्रिकली हीट
6: जल्दी एलर्जी
7: फकीरी हीट सोप
6: जो कील मानो से हिफाजत के
7: हीट सोप अब है हर रोग निखार
6: फकीर
7: को गहराई से सारासीम से तहफुजी घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है नीम सोप
6: हर अच्छे स्टोर से ना तो
8: एतमाद डॉक्टर फरहत हाशमी जो तालीमुल कुरान नव लगी
9: सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
10: जिसकी फजाओं में रची बसी है
9: जीए एर्क सिंध की आवाज़

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This transact is brought to you by
3: Al Habib Current Prosecco Bank Al Habib.
4: GFM KTN News.
5: मिसाइल हमला पुलन ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख़्मी। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छडि॒यो। बोश शहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान रेल ज़रिए तबाह करे छडि॒यो। अमेरिकी सेनेट कान जे दिफ़ाई निशानो अमेरिकी हमलनि जे अंजाउमान, बहरीन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशाना विढ़ाक जहान। ओमान में अमेरिका जे जदीद रेडार सिस्टम खे तबाह में कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई अमेरिकी फ़ौजी बि मारिजी विया आहिनि। हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तसदीक करे छॾी। $12 अरब जे ज़ब्त थियल असासनि जी जारी करण वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई आहे। आबना हर्मुज़ में जहाज़नि जी अचवञ जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ जे स्पीकर जो बयान। बाकर कालिबाफ चयो त आबना हर्मुज़ जो इंतज़ाम ईरानी क़यादत ई तय कंदी।

ईरान यूरेनियम ॿाहिरि उमाण बदिरां रचाव जी सतह घटाए न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लुबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक़ डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो। आबन हरमुज़ मां जहाज 60 ॾींहं ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टेट नेविगेशन या सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रम्प ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिसर ऐं गॾियल इमारतूं टेकाड़ी खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो। डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे। टिन हफ़्तनि जी घटि सतह ताईं पहुची वई। मेरी टाइम तंज़ीम मूजिब ख़मीस ॾियारे सिर्फ़ 8 जहाज़ आबन हरमुज़ खां गुज़रिया। 8 मां 7 जहाज़ ईरानी रस्तो इख़्तियार कयो। गडि॒यल क़ौमनि जे ईरान ऐं विच ओभर में शहरी जी मज़म्मत एंथोनी

सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के निशानो बनाने ते गलती जो इजहार कयो संदस चवण हो त अड़ा हमला कबूलन जोगा पेट्रो करर कर अली परवेज कॉन्फ्रेंस चयो त तेल जो अघ घट थिए या वधे कीमत तय थींदी पेट्रोल मालकन पारां हुकूमती फैसलो रद्द फैसलो ते एहतजाज जो जित

तेल जा अगर रोज मुकी वयो छा रोज मुकरर थींदा छा रेलवे जो किरायो रोज तब्दील थींदो पेट्रोल अघनि जे रोज़ानी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया अवाम परेशान पेट्रोल सां गॾु छा सब्ज़ी गोश्त ऐं फ्रूट्स रोज महांगा ऐं सस्ता थींदा पेट्रोल मालिक तेल महांगो थियण जी लालच में विकिरो था छा रोज ईअं ई थींदो सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी सदारत हेठि बस डिपोज शर्जील इनाम मेमण हिंदू हुकूमत पारां 50 डबल टेकर बस इलेक्ट्रिक बसूं ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल कयूं पयूं वञनि डिपोज लाइ घुर्बल एराज़ी जी निशानदेही ऐं फरहमी वारे अमल खे फौरी मुकमिल कयो वञे सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फरहमीअ लाइ पुरअज़म आहे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
1: हर दिन हर जिंदगी GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par.
6: फौजी अड्डन के निशानों बनाए वो गुलिस्तान सूबे में ईरान ए रूस के रेल जरिए गंढींदड़ पुल के बे अमेरिका के दिफाई नेवल निज़ाम के निशानों बनाए वो अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जाउमान बहरीन कुवैत शाम कतर ए इराक में जवाबी हमला अमेरिकी फौजी अड्डन ए दिफाई निज़ाम के निशानों बनाने की दावा पासदारन इनकलाब मूजिब उर्दन में हमले के नतीजे में अमेरिकी वेड़ाक जहाज तबाह थियान ओमान में अमेरिका के जदीद रेडार सिस्टम के तबाह किया वो शाम में भी अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह किया है जैसे नतीजे में केतरा ही अमेरिकी फौजी भी मारा वया कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण की तस्दीक करे छड़ी।

0: डॉलर जे जब्त थियल असासन जे जारी करण वारे मुआहिदे खे हतमी शकल डि॒नी वई आहे। आबना हरमुज में जहाज़नि जे अचवन जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण ते तफ़ाक़ कयो वियो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ जे स्पीकर जो बयान।
1: अहमद बेटा चलो उठ जाओ।
2: मम्मा
0: ईरान यूरेनियम ॿाहिरों माण बदिरां रचाउ जे सतह घटाए न्यूक्लियर फाइल थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। इसहाक़ डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाउ थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो। आबना हरमुज़ मां जहाज़ 60 ॾींहं ताईं ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रम्प ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब कतर मिसर ऐं गडि॒यल इमारतूं टेकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो। डील में को बि नाकारी नुक़्तो नाहे।

0: पढ़ाने ते गणती जो इज़हार कयो संदस चवण हो त अहिड़ा हमला कबूलण जोगा न आहिनि। पेट्रोल जे अघ जो ऐलान हाणे रोज थींदो। ओगरा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत सॼे मुल्क में पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघ रोज़ानो मुक़ररु कंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर अताला तारण ऐं अली परवेज़ मलिक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफ़ाक़ी वज़ीरनि चयो त आलमी मंडी तेल जो अघु घटि थिए या वधि, क़ीमत फौरी तौर तय थींदी। पेट्रोल मालिकनि पारां हुकूमती फ़ैसिलो रद्द, फ़ैसिलो वापसि न वठण ते एहतजाज जो चिताउ। तेल जा अघ रोज़ मुक़रर जो फ़ैसिलो त थी वियो, छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघ रोज़ मुक़रर थींदा? छा रेलवे जो किरायो रोज़ तब्दील थींदो? पेट्रोल अघनि जे रोज़ाने वारी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया। अवाम परेशान, पेट्रोल सां गॾु छा सब्ज़ी, गोश्त ऐं फ्रूट्स रोज़ महांगा ऐं सस्ता थींदा? पेट्रोल मालिक तेल महांगो थियण जी लालच में विकिरो रोके बि छॾनि था, छा रोज़ ईअं ई थींदो? सिक्योरिटी फोर्सिस जी वाना में कार्रवाई, दहशतगर्दी जी वॾी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस ॾखण वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े वाना में बारूदी मवाद सां भरियल गाॾी तबाह करे छॾी। कार्रवाई में ख़ारजी जहनुम भेड़ो ऐं 5 दहशतगर्द ज़ख़्मी थिया। गाॾी में मौजूदु धमाकेदार मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल थियणो हो। सीनियर वज़ीर शर्जी ना मेमण जी सदारत हेठि बस डिपोज लाइ ज़मीन जी फराहमी बाबति इजलास। शर्जी लीना मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत पारां 50 डबल सूं ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल कयूं पयूं वञनि। डिपोज लाइ घुर्बल एराज़ी जी निशानी ऐं फराहमी वारे अमल खे फौरी मुकमिल कयो वञे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं माहौल फराहमीअ लाइ पुर। पतंगावती तकरार तां जेड़ो निंगरी कतल, वारसन जो एहतजाज जेड़े में धक लॻण सबब सीमा चाचड़ दम धणी हवाले करे छॾियो। मुतासिरनि जो चवण आहे त बासरन घर ते हमिलो करे तशदुद कयो। धक लॻण सबब निंगरी कतल थी वई आहे, नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे।
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एच एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एच ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी वाइट एच ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जी आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इतनी प्यारी प्यारी लोग हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं।

बताया कि भाई अगर आपकी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसको जरा दूर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि जब आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती में किस तरह चार चांद लगने वाले। ओके जी, सारे साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक या फिर सवाल क्या है। तो अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए, ओके जी, तो आज का जो मेरा आप लोगों से सवाल होगा वो कुछ यूं होने वाला है कि आपने मुझे ये बताना है, फर्ज कर लीजिए अगर आपके फोन की जो मेमोरी है वो फुल हो जाए, यानी कि स्टोरेज पूरा फुल हो जाए और आपके फोन में सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपने उसमें से कुछ भी डिलीट आप नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, या तो कुछ पुरानी यादें हैं या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी जो ना अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे। ओके जी, तो सवाल कुछ यूं है कि आपने मुझे बताना है कि अगर आपके फोन का स्टोरेज फुल हो जाए, मेमोरी फुल हो जाए और आपके फोन में सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, सब कुछ ऐसा है कि आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइम आप क्या करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ओके जी, प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, सवाल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, बिल्कुल ही जब आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए जी, सो आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में ज्वाइन करते जा रहे हैं और साथ ही साथ ये बात जो है

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्टों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द, हिते जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
4: बिल्कुल जी, इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको मिल रहे हैं इतने अच्छे, इतने मजे के प्रोडक्ट्स, जो कि आप इस्तेमाल करने के बाद कहेंगे आए हाय ये कितने मजे के प्रोडक्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है वो फलां प्रोडक्ट लगाते हैं, क्या पता वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हो या ना हो, तो आप लोगों को ये बताते चलूं कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करेंगे तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यानी कि ऐसा है कि अगर आप नाइट क्रीम लगाने वाले हैं तो आपको नाइट क्रीम मिल रही है, फेयरनेस क्रीम लगाने वाले हैं तो फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब लगाने वाले हैं तो एक्नी ट्यूब मिल रहा है, साबुन लगाते हैं तो साबुन है, फेस वॉश लगाते हैं तो फेस वॉश। इस तरह बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो कि भाई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को मजीद पता चल जाएगा कि वाकई कितने अच्छे और कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही है। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते चलूं, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है और एलोवेरा मौजूद है, ये सब नेचुरल चीजें हैं और वो चीजें जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है, आपकी स्किन फेयर हो जाती है,

और आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम है वो सारे दूर हो जाते हैं। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को परफेक्ट वाले निखार मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एश ब्यूटी सोप मिल रहा है, और व्हाइट एश ब्यूटी सोप इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो भाई बड़े खुश हैं, बड़े सेटिस्फाइड हैं कि उनको वाकई फाइनली कोई अच्छा सोप मिल चुका है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद अब उनकी जिंदगी जो है किसी और चीज की उनकी जिंदगी में तलब ही नहीं रही। और इसी के साथ साथ अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, तो भाई उसका हल भी है हमारे पास। आपके लिए व्हाइट एश वाइटामिन सी फेस वॉश मौजूद है, और व्हाइट एश का वाइटामिन सी जो फेस वॉश है ना, आई हाय इसकी क्या बात बताऊं, इतना क्रीमी फेस वॉश है क्योंकि इसके अंदर जो है ना इतनी सारी चीजें हैं, और ये 100% जो है ना नेचुरल चीजों से तैयार किया गया है। तो अगर आप कोई भी अच्छा वाला फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश का वाइटामिन सी फेस वॉश लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपके हर करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो चुके हैं। उसके अलावा नहीं मिल रहे तो उसका हल भी बताते हैं कि आप कैसे जो है ना वो अवेलेबल कराएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे एरिया में चले जी मिल भी जाए लेकिन हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट, तो आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप ये सीन है कि अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं, आप ऐसा है कि आप कोई फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, फेयरनेस क्रीम की तलाश में हैं, आप डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं और आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, लेकिन खास करके खवातीन हो या मर्द हजरात हो, उनको ऐसा सीन बन जाता है कि भाई गर्मियों के सीजन में आप लोगों को थोड़ो जो है ना यो चीज जो टेंशन हूं आता, गर्मी में असांजी स्किन वधीक खराब थी वेंदी है, गर्मी में तव्हां वटि कोई अहिड़ा प्रोडक्ट ना हूंदा जेके तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कनि, तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त कनि, तव्हां जे लाइ व्हाइट एश वारनि बाबा इन जो बि हल कढियो आहे, इन जो बि सोल्यूशन मौजूद आहे। व्हाइट एश जी तव्हां वटि लवली क्रीम आहे, ऐं व्हाइट एश जी लवली क्रीम जी अगरि मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त व्हाइट एश जी जेका लवली क्रीम आहे जनाब, ही रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे, जेका फेयरनेस क्रीम आहे, हिन में एज लिमिट काई बि कोन्हे का, तव्हां हर उमिरि वारो माण्हू हिन खे इस्तेमाल करे सघे थो। व्हाइट एश जी लवली क्रीम जंहिंमें 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल आहिनि ऐं गॾोगॾु हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड थियल आहे, यानी कि तव्हांखे सन ब्लॉक जेको आहे न उन जो अलॻि सां वठण जो टेंशन न हूंदो। तव्हां ईअं न चवंदा त बाबा हाणे सन ब्लॉक वरी असां काॾां वठूं, सनस्क्रीन वठण ॾाढी जेको आहे न तव्हां स्किन खे ज़रूरत हूंदी आहे, तव्हां वठण जे लाइ ॾाढो इहो मुश्किल कमु हूंदो आहे। सन ब्लॉक मतिलब ईअं मूंखे लॻंदो आहे त दुनिया मुश्किल तरीन कमु आहे, जेको तव्हांजी स्किन ते सनस्क्रीन जेका आहे उहा सूट बि करे, वठी त ख़ैर तव्हां वेंदा पर सूट जेका आहे न उहा मुश्किल सां कंदी आहे, ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ वॾो मसइलो आहे जंहिंजी स्किन सेंसिटिव आहे, ऐं सेंसिटिव स्किन माण्हुनि खे घणी नीड हूंदी आहे त बाबा हू जेका आहे न पंहिंजी स्किन जी हिफ़ाज़त कनि, पंहिंजी स्किन खे प्रोटेक्ट कनि सिज जे असरातनि खां। ऐं अगरि तव्हां मेकअप लॻाईंदा आहियो, मेकअप खां तव्हांखे छुटकारो मिले थो, त पोइ बाबा तव्हां कहिड़ी जेको आहे कहिड़ी तव्हांखे कस आहे, तव्हां व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसो, जीअं तव्हांखे ख़बर पवे त बाबा मार्केट में केॾा भला भला प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि ऐं तव्हांखे इस्तेमाल करणु घुरिजनि। व्हाइट एश लवली क्रीम जेका भई तव्हां ॾींहं जो बि लॻाए सघो था, तव्हां राति जो बि लॻाए सघो था, फेयरनेस फार्मूला आहे, जंहिंमहिल तव्हांजी दिलि चई तव्हां लॻायो, बसि पंहिंजो फेस वॉश कयो ऐं व्हाइट एश लवली क्रीम लॻायो, तव्हां रेडी थी वेंदा। ओके जी, उनखां अलावा चले अगरि तव्हांजो फेयरनेस जो जेको मसलो उहो हल थी वियो हाणे, तव्हां एक्नी जी वजह सां परेशान आहियो, त एक्नी जी वजह सां तव्हां परेशान न थियो बाबा, तव्हांजे लाइ हाणे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मार्केट में अवेलेबल थी वियो आहे। ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जंहिंजे चेहरे ते काफ़ी सारा एक्नी अची वेंदा आहिनि, ऐं एक्नी जी वजह सां तव्हां घणो शदीद परेशान आहियो, भई तव्हां वटि खोड़ अहिड़ा मसला हूंदा आहिनि स्किन ते जेके तव्हां अगरि चाहींदा आहियो त घटायूं, उन्हनि खे ख़तमु कयूं, तव्हां खोड़ सारा टोटका ट्राए कंदा आहियो, खोड़ सारा प्रोडक्ट लॻाए ॾिसंदा पर तव्हांखे रिज़ल्ट कोई बि न मिलंदो आहे, त तव्हां वटि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे, ही आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, हिन जे अंदरि फुल जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि, कोई बि केमिकल न आहे, तव्हांजी स्किन खे कोई नुक़सान न पहुचाईंदो, ऐं तव्हांजी स्किन खे सिर्फ़ एक्नी खां न बल्कि तव्हांजी स्किन खे इलाही चीज़ुनि खां प्रोटेक्ट करण वारो आहे, जीअं तव्हांजे चेहरे ते एक्नी हुजनि, एक्नी जा निशान हुजनि, ब्लैक हेड्स हुजनि, व्हाइट हेड्स हुजनि, ब्लैक पोर्ट्स हुजनि, उन खां अलावा एक्स्ट्रा ऑयल हुजे या फिर तव्हांजे चेहरे ते कहिड़े बि क़िस्म जा एक्नी आहे, हर तरह खां तव्हांजे चेहरे जी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदो आहे ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणींदो आहे, तव्हांजी स्किन क्लियर हूंदी, बेदाग हूंदी, सोणी हूंदी, त तव्हांखे अञा वधीक मज़ो ईंदो बाबा पंहिंजी ज़िंदगीअ में। सो तव्हां पाण इन्हनि चीज़ुनि खां हाणे थोरो समझो त बाबा मार्केट में अवेलेबल आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब, जंहिंखे तव्हां इस्तेमाल कीअं करे सघंदा, इस्तेमाल करण जो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां।
त अगर तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो इस्तेमाल कयो था त तव्हांखे इस्तेमाल ईअं करणो आहे त तव्हांखे सुबुह जो बि लॻाइणो आहे तव्हांखे शाम जो बि लॻाइणो आहे अगरि घणा सफ़ा एक्निया त तव्हां मंझंदि जो बि लॻाए सघो था टे मरतबा लॻायो ऐं लॻाइण खां पहिरियां तव्हांखे फेस वॉश लाज़मी करणो आहे पंहिंजो मुंहुं जेको आहे न लाज़मी धोइजो मुंहुं धो क्लीन कयो पाण खे हथ अछे तरीक़े सां तव्हां क्लीन कयो उन खां पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जिते जिते दाणा जिते जिते निशान आहिनि जेके चीज़ूं तव्हां रिमूव करणु चाहियो था उन्हनि चीज़ुनि ते तव्हां लॻाए पोइ तव्हां जेको आहे न छॾे ॾियो कुझु ई देरि खां पोइ जेको तव्हांजो एक्नी हूंदो न उहो फील कंदव तव्हां वाक़ई त बाबा हिन में फ़र्क़ु अचणु स्टार्ट थी वियो आहे एॾो मतिलबु ही प्रोडक्ट बहितरीन आहे थधो थधो तव्हांखे फील थींदो ऐं तव्हांखे मज़ो अची वेंदो उन खां अलावा वाइट एस लवली क्रीम लॻाइण जो तरीक़ो बिल्कुलु ई आहे तव्हां कहिड़े बि टाइम ते लॻाए सघो था मेकअप जी तरह यूज़ थींदो मतिलबु ईअं न त मेकअप जी जाइ ते यूज़ थींदो बाक़ी ईअं न आहे त हिन में तव्हां ॾिसंदा त बाबा मर्द चवनि त बाबा ही हाणे मेकअप आहे असां कोन हणंदासीं न ही फेयरनेस क्रीम आहे हिनखे तव्हां सभु लॻाए सघो था पर अर्जेंट में अगरि तव्हांखे तयार थियणो आहे काॾे वञणो आहे कोई फंक्शन आहे का पार्टी आहे का शादी आहे कुझु बि आहे त तव्हां वाइट एश लवली क्रीम लॻाए तव्हां मिंटनि में रेडी थी सघो था ऐं हिनखे तव्हां ईअं लॻाईंदा बाक़ी वाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम आहे जेके तव्हां राति जे टाइम इस्तेमाल करे सघो था सुम्हण खां पहिरियों ठीकु आहे लॻाइण खां पहिरियों तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो या तव्हां वाइट एश जो फेस वॉश लॻायो या वरी तव्हां वाइट एश जो साबुण लॻायो ठीकु आहे इहे सभु चीज़ूं आहिनि जेके तव्हां लॻाईंदा तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे वापसि मिलंदी ऐं तव्हां ॾिसंदा त बाबा वाह वाह वाकई कमाल जा प्रोडक्ट आहिनि अगरि तव्हांजे एरिया में नथा मिलनि त पोइ तव्हांखे डायल करणो आहे 03-15-799-50-0595 3-15-79-5595 ही नंबर आहे जेको तव्हां डायल कंदा तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट एश जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी ऐं तव्हां उतां वठी सघंदा उन खां अलावा ॿी बि अलाए कहिड़ी ॻाल्हि जेका तव्हांखे ॿुधाइण चाहियां पई पर विसरी वई अच्छा टॉपिक थोरो ॿुधाए वेठूं था जिन माण्हुनि असांखे हाणे जॉइन कयो आहे त अॼु मूं मूंखां सवाल इहो पुछियो आहे त तव्हां हिकिड़ो फ़र्ज़ु करे वेठो अगरि तव्हांजो जेको फोन आहे ठीकु आहे मोबाइल आहे उनजो स्टोरेज सफ़ा फुल थी वञे ऐं तव्हांजे फोन में सभु चीज़ूं जेके आहिनि इम्पोर्टेंट आहिनि का बि चीज़ तव्हां हुनखे डिलीट नथा करे सघो कुझु ओल्ड मेमरीज़ आहिनि कुझु अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि जेके तव्हां भई रखणु चाहियो था पाण वटि सो कुझु बि तव्हांखे डिलीट न आहे करणो तव्हां वटि सभु चीज़ूं इम्पोर्टेंट आहिनि त पोइ इन सूरत हाल में तव्हां छा कंदा

0: अब ये क्या लॉजिक मुझे समझ नहीं आती है. गाना एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. आपकी सदर आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है. अभी तो आए हैं. अच्छा तो हमारे साथ ये मौजूद है, एक मिनट.
1: धीरे धीरे
0: अच्छा एएन नूर हमारे साथ हैं. एएन नूरपुर से हैं या फिर एएन, अच्छा मुझे थोड़ा इनका मैसेज जो ना वो कंफ्यूज कर चुका है. तो एएन नूरपुर से हमारे साथ है, आपने गाना लिखा है जी. मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना सुनेंगे. बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहा जाता है. और ये हमारे साथ है मेरी छोटी बहन कुलसुम और मेरे बाबा जान मिस्री की फरमाइश है, प्लीज प्ले कीजिएगा गाना, लिखिए आपका गाना लगाते हैं जी. रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंभानी है, वालेकुम असलम. टॉपिक असा यूएसबी वठनासी यावरी कंप्यूटर में विझंदासीं. ठीक है भाई, ठीक है. मीरपुर खास अब्दुल्ला महरी कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाए तो मैं डिलीट कर दूंगा. कितनी इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट कर देंगे सच्ची बताए. और चाचा खालिद हमारे साथ कहते हैं बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, जातू जी माफ किया, दिल को तोड़ने वाले ओएसटी सुना दीजिएगा. इतना सीडी गाना बोला है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ सुनेंगे. और ये हमारे साथ है मिठड़ी सिदरा मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम सलामदर. सदर बलोच हैं मोरो से, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और आपकी आवाज भी माशाल्लाह मुझे अच्छी लगती है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. और उसके अलावा वरियाम ने कहते हैं टॉपिक फोन की सारी मेमोरी एक दूसरे मेमोरी कार्ड में कॉपी करेंगे तो फिर सारा फोन खाली हो जाएगा, फिर उसमें जो भी करें तो कर सकते हैं. ओके ओके, नॉट बैड. अच्छा नाजिश कहती है लाड़काना से हमारे साथ है, दिल लेके

उफ़ कहते ही कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हैं, एहसान तो गया। आय हाय क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? टॉपिक में अच्छा फोन आपने लिखा है, उसके बाद आपका मैसेज जो ना वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो चुका है। ये पैनल पर पता नहीं क्यों मसला है कि मैसेजेस थोड़े से जो ना वो मिसिंग पार्ट हो जाते हैं। तो आपको वेलकम करते हैं नाजिश मेरी प्यारी जान, आप हमारे साथ हैं। और बताएं सर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है? अच्छा हैप्पी कहती है सिडो जानी मानी खाओ तो सलाह थव, और तुम सुनाओ घर से? नहीं मैं नाश्ता करके आ

0: मसला है कि मैसेजेस थोड़े से जो ना वो मिसिंग पार्ट हो जाते हैं, तो आपको वेलकम करते हैं नाजिश मेरी प्यारी जान, आप हमारे साथ हैं और बताएं सर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा हैप्पी कहती है सिडो जानी मानी खाओ तो सलाद हव, और तुम सुनाओ घर से। नहीं मैं नाश्ता करके आती हूँ।
1: मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर, सिंध की आवाज़ जीए FM 88 नेटवर्क।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: छह लोरिस्तान एवं शहर में बिजली घरन पुलन नेवल ए फौजी अड्डन ते भी हमला। अमेरिकी हमलन में गुलिस्तान सूबे में ईरान ए रूस के रेल जरिए गंढींदड़ पुल भी तबाह थी वही। अमेरिकी सेनेट का मौजूद ईरान के दिफाई ए नेवल निजाम के निशानो बनाया वो है। अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान बहरीन क्वार। अमेरिकी फौजी अड्डे ने दिफाई निजाम के निशानो बनाने की दावा। पासदारन इनकलाब मौजूद उर्दन में हमले के नतीजे में अमेरिकी वेढ़ाक जहाज तबाह थे। ओमान में अमेरिका के जदीद रेडार सिस्टम के तबाह किया वो। शाम में भी अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह किया है जैसे नतीजे में केतरा ही अमेरिकी फौजी भी मार वह। कोयत ईरानी हमले में बिजली निजाम मुतासिर थियण की तस्दीक करे छी। $12 अरब जा जब्त थियल असासन जारी करण वारे मुआहदे के हतमी शकल डिनी वही है। आबना हर्मुज के जहाजन की अचवन के राबते जो निजाम कायम करण ते इतफाक कयो वयो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ जो स्पीकर जो बयान। बाकर कालेबाफ चयो त आबना हर्मुज जो इंतजाम ईरानी क्यादत ही तय कंदी।

0: ईरान यूरेनियम ॿाहिरि उमाण बदिरां रचाउ जी सतह घटाए न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। एसाक डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाउ थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो वञे। हॉर्मुज़ मां जहाज 60 ॾींहं ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड नेविगेशन जा सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रम्प ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिसर ऐं गडि॒यल अरब इमारात टेकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि में ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो। डील में को बि नाकारी नुक़्तो शामिल नाहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश। फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मुअसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 2:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर निया जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
5: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
7: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
8: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
9: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती ज़हन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।

तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराती रहिए, और उसके अलावा लगाने के क्या तरीके कार हैं वो भी बताते हैं। लेकिन आप जो हैं हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल सी, अगर आपको नहीं पता के तरीके कार क्या होंगे हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के, तो आप ऐसा करते अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर टाइप करना है LRK, दीजिए अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर। और फेसबुक हमारा पेज है जनाब जी लाड़काना FM 88.8। फेसबुक पर आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर कर रहे हैं।

बहुत बड़ी बात है। अगर ये पोस्ट को लाइक और शेयर करिए अगर अभी तक नहीं किया तो।

0: ओके तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप एंजॉय करेंगे, साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स की जाने बातें तो यहाँ पर अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भेण नोटिफिकेशन पो तो प्रोग्राम बुधण शुरू कयो आहे कुछ वडन माणन जो फरमाइशों भी हलाइंदा करियो
1: बिल्कुल जी हुकुम कयो
0: तवां जी फरमाइश भी हलाइंदा सी आई उन का अलावा ओके जी ओके चाचा खाले तवां टॉपिक ते जवाब दिनो आहे ठीक है जी बहुत शुक्रिया आमिर कहते हैं फिर लंच किस टाइम करती हैं 3 बजे के बाद वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम ला जवाब थैंक यू किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय अदा की आयो आओ बी आ गया की आयो खुश आयो असा का बगैर बिल्कुल जी खुश आयो पर तवाजो हजन भी लाजमी है सो मोटी तो जल्दी सूफियान अहमद हमारे साथ मौजूद वालेकुम अस्सलाम अनवर भाई कहते हैं हम नाइट क्रीम और डे क्रीम व्हाइट एश दोनों लगाए गए बिल्कुल जी दोनों लगाइए रात में व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाइए और दिन में व्हाइट एश लवली क्रीम लगाइए आय हाय क्या बात है ओके जी सूफियान कहते हैं नाइस योर शो थैंक यू जी थैंक यू मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं

लेकिन सिंड्रेला इंतजार नहीं करती, ये थोड़ा सा कैजुअल है लेकिन हाँ हकीकत है। लेकिन आप ऐसे कीजिएगा, आप डेज स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। तो डेज स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ साथ डेज स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के तरीकेकार क्या होंगे, अब आप ये सोचेंगे कि भाई जान ये तो सिंड्रेला ने बता दिया कि ये सेंसिटिव स्किन के लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हम नहीं लगा सकते? तो बिल्कुल जी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, या फिर नॉर्मल टाइप हो, कॉम्बिनेशन हो, किसी भी तरह की स्किन हो ना, उसके ऊपर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया फार्मूला है, तो इसे आप लगाइए, बेशक बहुत ही अच्छे वाले आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन फेस वॉश लगाएंगे तो वो भी साथ में लगाइएगा। और ये इतने प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जब आप इसे इस्तेमाल करके देखेंगे तो आप कहेंगे आए हाय चस आ गई।

हजार खान हमारे साथ मौजूद है। हजार भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। मामा जमान क्या कहते हैं, टॉपिक एक फोन का मेमोरी फुल हो गया तो बुआ जी दूसरा मोबाइल ले लेंगे, पैसों जाम आप उनके पास। वाह सही बुधायो ना मारो उनके फुर करे वेंदव। दर्दी दिल आप हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी। ताजन डेयरी हमारे साथ। हेलो

0: हाँ जी मोहम्मद खेबर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लाजवाब प्यारा शो, थैंक यू जी थैंक यू। और अनवर भाई कहते हैं
1: LionWare Music Box।
0: अनवर भाई चंड ते हलण जो गाल करे तो चंड ते अना हाली को हलंदी हाली थोड़ो सब्र क्यूं ठीक उनका अलावा हमारे साथ हैं जी आमिर अली। आमिर आपको वेलकम करते हैं जी, थैंक यू। और हजार भाई आपका बहुत शुक्रिया। इनोसेंट रांझा हमारे साथ के दिहाई, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, थैंक यू माशाल्लाह भी बोलते नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। और चाचा खालिद कहते हैं गुड शो बेस्ट होस्टिंग, और कहते हैं आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, वैसे चार तो मिले हुए और कितने मिले।

क्या बात है जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जल्दी से बताइए। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ ही सकरण से कहते हैं सिद्रा मुस्कान प्रोग्राम अच्छा है आवाज के साथ साथ, गुड वेलकम जी, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और उनका अलावा अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। अच्छा नदीम अहमद बलोच हमारे साथ हैं, नाजुक जी ये आपने लिखा, शुक्रिया। और अली मुर्तजा कहते हैं कि दोस्तों के साथ आपका शो सुन रहा हूँ, अब्दुल कदीर और रफीक अंसारी सबको वेलकम।

0: 88
1: सिंध की आवाज,
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
3: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
4: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
5: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
7: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
4: उन्हनि जी जिंदगी में थोड़ी आसानी पैदा थी वने, उन्हनि खे ॿुधायो वञे त बाबा कहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जेके मार्केट में तव्हां इज़ीली वञी परचेस करे सघो था, उन्हनि खे परचेस करण खां पोइ तव्हांखे कहिड़ा फ़ाइदा मिलंदा। उहे फ़ाइदा जेके आहिनि तव्हांखे ॿुधाईंदा आहिनि जीअं तव्हांजी ज़िंदगी थोरी आसान थी वञे, समझो था। सो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप भी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने भी वाले हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम बता सकें आप लोगों को मजीद उस प्रोडक्ट के बारे में कि जो अगर आप थोड़ी सी

ओके जी, ये आजकल नेटवर्क का बड़ा मसला है भाई, पता नहीं क्यों इतना परेशान किया हुआ है। ना वाईफाई ठीक चल रहा है, ना नेटवर्क सही चल रहा है, अलाए छा थींदो असांजो। ओके जी, दुआ ही कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो भाई जान आपको वेलकम एंड खुशामदी। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 3615-79-5595। नंबर जल्दी से डायल कीजिए ताकि आप की करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए। आप रह ना जाएं भाई, क्योंकि आप भी इस्तेमाल करें जी स्किन ब्यूटी क्रीम। ये इतना परफेक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जानेंगे कि वाकई भाई सिदरा तसफा सही पड़ी जावे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तमाम के डी स्किन फेस वॉश भी मिली रहे हुआ है, अगर तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना चाहो था, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो मेडिकेटेड फार्म तैयार थी अला डॉक्टर जी निगरानी जी अंदर तैयार थे प्रोडक्ट आए सफा प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आए तुम लगाए दे तो तुम कि अमीरन वारी पांच स्किन जो ख्याल रखो पवे उन प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में वाकई मुश्किल पेश इंदी होंगी। तो मैं यो चाहिए तमाम जी भी मूल प्यारा प्यारा मूल असो प्रोग्राम बुधा थी वे उन स्किन का कड़ा फायदा मिलेगा जी तवी जिंदगी थोड़ी आसान थी वे समझो था। सो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाई जे एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाई जे एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप भी वाई जे एश ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने भी वाले हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम बता सकें आप लोगों को मजीद उस प्रोडक्ट के बारे में, कि जो अगर आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके

ओके जी, ये आजकल नेट लाहे भाई, पता नेटवर्क सही अलग थी असो। ओके जी, दुआ ही कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो भाई जान आपको वेलकम एंड खुशामदीद। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 3315-79-595। नंबर जल्दी से डायल कीजिए ताकि आप की करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाए, आप रह ना जाए भाई, क्योंकि आप भी इस्तेमाल करें प्रोडक्ट जब का मेडिकेटेड फार्मुलेशन तैयार थियल है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार थियल प्रोडक्ट आए, सफा प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट है लगाए दे तो तुम की अमीर वाली फीलिंग इंदी, तो तुम लाजमी जी स्किन ब्यूटी लिस्ट में सुनगाने के बुधंदी तुम असर मौजूद है तुम्हारे मैसेज की तरफ भी अचूँ था।

अच्छा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो ऐं नेटवर्क जो मूंखे लॻे थो काफ़ी मसलो आहे सो लाइव बि थोरो डिस्टर्ब थी पियो असांजो ओके जी सो नाज़िश असां सां गॾु मौजूदु आहे नाज़िश लाड़काणे खां असांखे ॿुधे पई असांजी सोणी नाज़िश टॉपिक ते तव्हां चयो आहे ठीकु आहे और आगे जो आपने गाना लिखाया ना वो आगे आपका जो सारा मैसेज है वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो चुका है ये आज नेटवर्क ही हुआ है तो मेरी जान आपको वेलकम कहा जाता है और हैप्पी गर्ल कहती सिडो जाने लोग कहते हैं पैसा हो तो कुछ करें और पैसा कहता है कि तुम कुछ करो तो मैं आऊं बिल्कुल सही बात बहुत अच्छी बात और ये हमारे साथ यासीन गुडे असां खुश आहियूं तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो सिदरा असां टच मोबाइल रखण ई छॾे ॾिनी काफ़ी टाइम थियो आहे सुकून लॻो पियो आहे बिल्कुलु तव्हां सही था चओ टच मोबाइल बाबा आज़ार आज़ार और दिलरुबा खे ॾींहुं अस्सलाम अलैकुम मुस्कान ज़ानी क्या हाल है नाइस शो और भाई यासीन खंड और सब सुनने वालों को सलाम दीजिएगा ओके दिलरुबा चाचा खालिद कहते हैं एफ बी ते शो स्टॉप थी वियो आहे हा लॻे पियो त नेटवर्क जो काफ़ी मसलो आहे पर लाइव त हले पियो पोइ अलाए मसलो हूंदो थोरो स्ट्रीमिंग और न खां अलावा ये हैप्पी गर्ल कहती सिडो जानी आप अच्छा कहती आप बहुत अच्छी वो इंसान बहुत खुश नसीब होगा जिसके नसीब में आप हो यो तो तव्हां खे लॻे थो न मां जुड़ी आहियां जुड़ी अलाह उन ॾे खैर करे अलाह

ओके जी ओके. और दिलरुबा कहती है टॉपिक चंदा यूएसबी है, उसमें कॉपी करके फिर मोबाइल में रिमूव कर दूंगी. ओके ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. किशोर भाई कहते हैं अदा से पो तो आए हाँ, हेडी थकावट आए यकीन कयो पो भी तुझे शो में आयो आए हाँ. कदर कर मुझो चरी कदर आ बाबा कदर आ. बिलाल अली हमारे साथ मौजूद. बिलाल कहती है असलाम वालेकुम जी. वालेकुम असलाम बिलाल, कैसे हैं? ठीक ठाक है. और उसके अलावा है जी अब्दुल रजाक भाई हली पोटो स्टाफ का तासन में प्रोग्राम बुधो पया मोहब्बतू आएं. ओके दिलरुबा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे. आमिर कहते हैं आपका शो लाइक और शेयर कर दिया है, थैंक यू जी.

ही भरते हैं। अच्छा चाचा खालिद के दी मुखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम सुठी लगी ॾिसण में आयम चले ठीक है फिर आप परचेज कीजिएगा ॾिसण में सुठिया लगाने में उनका वधिक ताकि मजो अची वेदो। ओके जी अली मुर्तज़ा कहते हैं कि मुज़म्मिल सांडियो अली मुराद अंसारी भी यू को सुन रहे हैं सब मी को सुन रहे हैं सबको वेलकम। आज नेटवर्क जो है ना वो आप लोगों को सही से दे रहा है बड़े शहरों में। अच्छा अनवर भाई कहते हैं मोरो में प्रोग्राम सही पे हले। हाँ भाई दुनिया हेॾे जो होॾे थी वञे पर मोरो में प्रोग्राम असांजो सही हलंदो आहे। थैंक यू मोरो वारो।

ओके जी, दर्द दिल हांसी बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू आप हमारे साथ हैं. और उसके अलावा ये हमने लास्ट में गाना लगा लिया है जी, जा तुझे माफ किया. हमने भी सबको माफ कर दिया, बस आप सभी मुझे माफ कीजिए क्योंकि आज बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू आप हमारे साथ हैं. और उसके अलावा ये हमने लास्ट में गाना लगा लिया है जी, जा तुझे माफ किया. हमने भी सबको माफ कर दिया, बस आप सभी मुझे माफ कीजिए क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि तकरीबन बहुत से लोगों के गाने और फीडबैक्स रह चुके होंगे प्रोग्राम में. चलें कोई बात नहीं. और सैम अमीर कहती माशाल्लाह कनड ई ॿुधे थी चरी चए थी बेशक अलाह कंदो उहो बि झंडड़ो ई हूंदो पोइ त मौजू ई मौजू गुड लक. हा वैसे चवंदा आहिनि जहिड़े खे तहिड़ो मिलंदो आहे. सही आहे सहलनि.

ओके जी, सो गाना सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, इस गाने को एंजॉय कीजिए और गाने के साथ ही जरा मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। ओके जी, यहाँ पर फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं। मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं। कहती है सलाम टू माय कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को। कहती हैं जनरली हूँ। हाँ जी, बहुत बड़ी जनरली हूँ। और आपको भी वेलकम हो गया फजीला। और उसके अलावा जो है, आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताइएगा मुझे जरूर। आपके एरिया में मिल रहा है नहीं ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ वरी मिलूँ था तमाशा जेको आसो पंजी पची वाले प्रोग्राम में पांच वोटो सुनो ख्याल रखना थी मुझे तो माजरत कहूँ था। अच्छा रिहाना हमारे साथ ही बखर से आपको वेलकम। आबिद बिरोही भाई है, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आप ज्वाइन करते जा रहे हैं प्रोग्राम और ऐसे ही ज्वाइन करते रहा करें और आपका बहुत शुक्रिया। सो पंज बजे वाले प्रोग्राम में लूं था पंज बजे जो मुख्य ज्वाइन कर नेटवर्क जो थोड़ो मसलो जो लगे तो वही वो है नेटवर्क थोड़ा आसान नेटवर्क खराब हों गाल समझ में नहीं आने करो चाहिए जी। बस टाइम पूरा थी तक इजाजत वेटू था मोकलानी ना सन सलामत सा सलामत पाँच लाइ थोड़ा ख्याल रखना है जी। स्किन ब्यूटी क्रीम हुए या वही वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल तुम लाजमी कंदा रहो जी तक खबर पे तो बाबा मार्केट में केदा मजेदार केदा जबरदल है। सो इस्तेमाल कंदा रहो पानी खूबसूरती के जो सो वेलकम कर। ओके जी, सो मोकलानी ना ही सिंध सलामत सा सलामत अलहा।

0: Peace. Bye-bye. Love you all. And take care.
1: Shah Latif ka Sufi Thikana. Fatim. अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: It's 3 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har achhe store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: 12 अरब डॉलर जा जब्त थियल असासन जारी करण वारे मुआहदे के हतमी शकल डिनी वई आहे आबन हरमुज में जहाज़न जी एच वन जे राबते जो निज़ाम कायम करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो ईरानी पार्लियामेंट बाकर के स्पीकर जो बयान त आबन हरमुज जो इंतज़ाम ईरान यूरेनियम ॿाहिरि उमारण बदिरां रचाव जी 7 घट न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा नायब वज़ीर आज़म एसाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू एसाक डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो वञे आबना जहाज़ 60 ॾींहं रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था स्टैंडर्ड नेविगेशन जा सर्विस फीस ॾियणी हूंदी ट्रंप ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई सऊदी अरब कतर मिसर ऐं गडि॒यल अरब इमारात टहिकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो डील में को बि नाकारी नुक़्तो शामिल नाहे गडि॒यल क़ौमुनि जे ईरान ऐं विच ओभर में शहरी हंधनि ते हमलनि जी मज़म्मत एंथोनी गोतरेस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खे निशानो बणाइण ते गणतीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त अहिड़ा हमला क़बूल करण जोगा न आहिनि फ़ैसिलो त थी वियो छा पब्लिक रोज़ त फ्रूट्स बि रोज़ महांगो हूंदा पेट्रोल अघनि जे रोज़ानी वारी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया आवाम परेशान आहे वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त सियासत ते यकीन रखूं था सभिनी खे गॾिजी मुल्क जी तरक़ीअ लाइ किरदार अदा करणो पवंदो सियालकोट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ख़्वाजा आसिफ चयो त सियाल ॾिसी दिलि जी तरक़ीअ लाइ आहिनि सीनियर वज़ीर शर्जी लिना मेमण जी सदारत हेठि बस डिपोज लाइ आहे डबल डे 500 के इलेक्ट्रिक बसूं ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल कयूं पयूं वञनि डिपोज लाइ घुर्बल एराज़ीअ जी निशानदेही ऐं फरामी वारे अमल खे फोर वञे सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं माहौल ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ पुरज़म आहे

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए?
3: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराना जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल किए कजी?
3: यहां में बखा ट्रे भेरा नरमी सा लगायो आई आर जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम, अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: DFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: देखिए इक्तदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: کیونکه من گرینم.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे उन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: खाने को तोड़ना चाहता है। मैं तुम्हें दूंगी नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, इसकी जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुरंगन ए सामुंडी पानी मिठो कदर प्लांट्स के निशानो बनाए हुए हमलन में शहीद थियल चयन औरतन समेत अठ जणन चूं तस्वीरू भी जारी केतरा ही जख्मी ईरानी मीडिया मूजिब अमरीका मेरी टाइम कंट्रोल टावर के निशानो बनाया जासिक बेट से हजारे शहरियन के पानी की फराहमी मुअत्तल थी वही ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ता ईंदड़ वेंदड़ रस्तन ए रेलवे ट्रेस के भी तबाह किया हुआ अमरीकी हमलन में गुलिस्तान सूबे में ईरान ए रूस के रेल जरिए गंडीदड़ पुल भी तबाह थी वही अमरीकी सेंटकॉम मूजिब ईरान के दिफाई ए नेवल निजाम के निशानों बनाए हुआ है। ईरानी फौज जा कुवैत उर्दन ए बहरेन में अमरीकी फौजी अड्डन से जवाबी वार सऊदी अरब के शहर अलखरिज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के मिसाइल से निशानो बनाए गयो उर्दन ए कुवैत पारा ईरान के समूरन मिसाइल्स के तबाह करने की दावा कुवैत ईरानी हमलन से भी बिजली घर ए डीसिलिनेशन प्लांट मुतासिर थियण की तस्दीक भी कर छी अमरीकी मीडिया जो चवण है त उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डन से ईरानी हमलन दौरान केतरा ही फौजी जख्मी थिया आहिनि। हाँ जंग से गड गालियन वारी पॉलिसी खत्म थी वही ईरान अमरीकी हमला जारी रहने की सूरत में तकरार के इलाकाई जंग में तब्दील करने की धमकी दई छी ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रजाई है त ईरान की हिकमत अमली जवाबी कार्रवाई से बधल है दुश्मन मिसाइल फायर कन्द है तेहरान जो जवाब उन ताकतवर हों ईरान जो बुनियादी मकसद दुश्मन के सबक सेखारण जंग जो खात्मो है गडियल कौमन में ईरान के नुमाइंदे पारा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमला बंद कर मुतालबो ईरानी परदेह वजीर अब्बास राखी है आखिरी साह तन जो दिफा किया अमरीकी हमलन में शहीद थियल ईरानियन जो खून जया थे न डींदी नायब सियासम साहकार की गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोतरे से मुलाकात इलाकई आलमी मामलन बाबत गाल बोल नायब वजीर आजम की इंडोनेशिया के इकतसादी मामलन वारे वजीर से भी मुलाकात इसाकदार अरब मीडिया के डिनल इंटरव्यू में चाहिए त ईरान यूरेनियम बाहर उमान बदरा रचाव की सतह घटाए अमरीका अग में मुतालबो किया तो ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम बाहर मुंतकिल वे आपना हुर्मुस में जहाज 60 डीहन ताई टैरिफ डेण का सिवाय गुजरी सकता स्टैंडर्ड न्यूविकेशन या सर्विस फीस डेणी हूंदी ट्रंप गालियन दौरान जाती तौर तो रहनुमाई कई सऊदी अरब कतर मिस्र गडियल अरब अमारात चाकड़ी के सपोर्ट कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाना में दहशतगर्दी की वही कोशिश नाकाम बनाए छी बारूद से भरियल गाड़ी धमाके का पेरिया ही तबाह कार्रवाई में एक खारजी जान भिड़ो पंज दहशतगर्द सिक्योरिटी जरियन मूजिब गाड़ी में धमाकेदार मवाद इम्कानी तौर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल थियण हो घरू वजीर पारा फोर्सेस के भेटा पेश बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ है तो असा खिदमत की सियासत से यकीन रखू था सभी के गर मुल्क की तरक्की लाए किरदार अदा करो पवन सियालकोट में मीडिया से गाले ख्वाजा आसिफ तो सियालकोट की तरक्की ऐसी दिल खुशी है मरियम नवाज सियालकोट की तरक्की लाए अरबियन रुपयन जा फंड जारी किया है। तेल जा अघ रोज मुकर्र जो फैसलो तो छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा अघ भी रोजानो मुकर्र थींदा रेलवे जो किरायो भी रोज तब्दील थींदो पेट्रोल सां गॾु छा सब्जी गोश्त फ्रूट्स भी रोज महांगा सस्ता थींदा पेट्रोल अघनि जी रोज़ाना वारी फेरफार केतिरा ई सवाल पैदा करे छॾिया आवाम परेशान लेडी हेल्थ वर्कर जो मुतालबन की मईटा लाए गड़ी खुदाबश बुटो में शहीदन की मज़ारन आडो एहतजाज मुख्तलिफ इलाक में आयल औरतन लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के PPHI में जिम करण खिलाफ मुजाहरो कियो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो चवण हो तो सेहत खाते में PPHI प्रोग्राम में जिम करण वारो फैसलो नौकरी के तहफुज खिलाफ है सालन का डूरान इलाक में बुनियादी सेहत जो खिदमतू सरअंजाम दई रही घड़ी खुदाबश मैसेज आ चुको कारण इो है ये प्रोग्राम शहीद बेनजीर के दौर में शुरू कर वो हुकूमती यो फैसलो फौरी तौर वापस वटे असा के सेहत खाते के मुलाजिम तौर बरकरार रखो वे। जस्कम के मरकजी सट से कारपोरेंट की गिरफ्तारियों बारडन के अफवाह खिलाफ एहतजाजी मुशायरा दादू सरहाड़ी ए फिंगरियो बेन शहर में कारपोरेंट एहतजाज कर थुल पुलजी स्टेशन नवाबशाह खिपरो टंडो आदम में भी एहतजाजी मुजाहरा क्या वह गिरफ्तार कल कारपोरेंट की आजादी ए सूबे में अफवाह थियल बार फौरी बाजियाब मुतालबो।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे उन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: एरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट लॉस्ट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: आवाज संगीत जो अटियारी 8.6 जो आवाज
2: सुपर एफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अवांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवांजी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम,

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: Destino.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: जिस धरती से जुड़ा है आज
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: कोमन में ईरान के नुमाइंदे पारा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमला बंद करण जो मुतालबो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त आखिरी साह ताईं वतन जो दिफ़ा कयो वेंदो। अमरीकी हमलनि में शहीद थियल ईरानियुनि जो खून ज़ाया थियण न ॾींदासीं।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद
1: दिलाता। मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट चुका है।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगी।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान।
3: मेरी बच्ची की रूह को छलने की है, उसके पाकीजा किरदार पर खींचो उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
4: आशा, आशा, आशा।

0: के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना, गेट लॉस्ट। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक असीम से तहफ़ुज़ फराहम करने ऐसी होने वाली गुड़ने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर

0: यार रिव्यू आहे जो हलण
1: माल छो नथो करी
0: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
1: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा असाबनि जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल सट धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन ले मुतासिर थियल हासिल करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर अड़ी नालो वठी खरी कीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: हो असल राज सिर्फ डी बीट्स फॉर सिर्फ बिंदीहन में डा करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी
3: हक सिंध जो आवाज़।

0: देखिए राह की सिर
1: गीत जो आवाज FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो उतरदा रहो।
2: सुबह की या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: फकीरी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने जरा

0: Trino.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

पहचान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत मोहब्बत

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: रक्त से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी उधर
2: सुबह की या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: ये

0: देंगे पड़ा।
1: ये पागल खाना पीर से जुमे 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज,
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो उदंदा रहो।
2: सुबह की अब आप सुनेंगे जिए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: देखते हजारे शहरियन के पानी की फरहमी मुअत्तल थी वही। ईरानी कोट बंदर अब्बास ता ईंदड़ वेंदड़ रस्तन रेलवे ट्रैक्स के भी तबाह कर वो। अमरीकी हमलन में गुलिस्तान सूबे में ईरान रूस के रेल जरिए गड्डीदड़ पुल भी तबाह थी वही। अमरीकी सेंटका मूजिब ईरान के दिफाई नेवल निजाम के निशानों बनाए वो है। ईरानी फौज जा कुवैत उर्दन बहरैन सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डन से जवाबी वार। पासार इनकलाब उर्दन में अलजरक एयरबेस से हमलों करे ब फायर जेट्स से अमरीकी जंगी जहाज तबाह किया है। हमले में केतरा ही अमरीकी फौजी भी जख्मी थे। बहरैन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपू के बैलिस्टिक मिजाइल ड्रोन्स का निशानों बनाए वो। बहरैन के शेख ईसा एयरबेस से अमरीकी जंगी जहाजन वाले हंध से भी हमलो किया। कुवैत में अल अहमदी बंदरगाह सऊदी अरब के शहर अल खरिज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के मिसाइल सा निशानों बनाए अमरीका के वो नुकसान पहुंचाया है। कुवैत बिजली डीसेलिनेशन प्लांट समेत अहम हंधन से ईरानी हमलन की तस्दीक कर छी। हाँ जंग से गड गालियन वाली पॉलिसी खत्म थी वही। ईरान अमरीकी हमला जारी रहने की सूरत में तकरार के इलाकई जंग में तब्दील कर दी धमकी रही छी। ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रजाई चाहिए है ता ईरान जवाबी कार्रवाई से बदल है। दुश्मन मिसाइल फायर कन् अब इनका ताकतवर हों। ईरान जो बुनियादी मकसद दुश्मन के सबक सेखारण जंग जो खात्मो है। गडियल कौमन में ईरान के नुमाइंदे पारा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमला बंद करण जो मुतालबो। ईरानी पड़े वजीर अब्बास राखी चाहिए है आखिरी साह ताई वतन जो दिफा किया वो। अमरीकी हमलन में शहीद थियल ईरानियन जो खून जया थे न दींदी। ईरान से हमला वधाने की तैयारी अमरीका वधिक रिफ्यूलिंग जहाज इसराइल माणे छा। रूसी मीडिया मूजिब अमरीका तरफा ईरान खिलाफ जारियत वधाने की तैयारी कई पई वे। ईरान में शहरी ढांचे के निशानों पाने बाद रिफ्यूलिंग जहाज मोकलिया गया। नायब वजीर अजम इसहाक डार कोती पढ़ई वजीर शेख जराब जाबिर अल अहमद अल सबा विच में फोन के राबो। पढ़ई तर्जुमान मौजूद बिन्हीं अखबारों खत्े की ताजी सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई। कोती पढ़ई वजीर पारा ईरान के हमलों से सख्त घटती इस्लामाबाद मुकामती आदर्शनामे से मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद जाहिर। खत्े में अमल लाए पाकिस्तान की तामीरी सालिसी बारे किरदार की सारा। इसहाक डार चो जंगबंदी के वायदन की पासदारी चिकाण वधाईदड़ कदम का पासो करण अंटर है। न्यूयॉर्क में मौजूद नायब वजीर आजम इसहाकार गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात कई। इलाकई आलमी मामलों से गाल बोल। सिक्योरिटी फोर्सेस बाना में दहशतगर्दी की वही कोशिश नाकाम बनाए छी। बारूद

सां भरियल गाॾी धमाके खां पहिरें दफ़ा कार्रवाई में हिकु ख़ारजी जहनुम भेड़ो। पंज दहशतगर्द सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि गाॾी में धमाकेदार मवाद इम्कानी तौर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल थियणो हो। घरू वज़ीर पारां फोर्सिस खे भेटा पेश। पाकिस्तान भारतीय जहाज़नि लाइ फज़ाई हदनि ते लॻायल पाबंदी में वाधि करे छॾी। भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स भारतीय मिल्कियत या लीज़ ते ॾिनल जहाज़नि तोड़ी फ़ौजी जहाज़नि लाइ फज़ाई हदूं इस्तेमाल करण ते पाबंदी हूंदी। पाबंदी में 24 अगस्त 2026 ताईं वाधि कई वई। सिंध जे क़ौम परस्तनि पंजाब जे न्यू जलालपुर केनाल खे सिंध जे पाणी ते धाड़े जो मनसूबो करार ॾेई छॾियो। तकरारी केनाल फौरी तौर बंदि करण जो मुतालबो क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज अतीफ परी जो चयो आहे त पंजाब ज़बरदस्ती सिंध जे हिसे जो पाणी चोरी करे रहियो आहे। सिंधु ते को बि नओं केनाल या डैम कबूल नाहे। गैर कानूनी जलालपुर केनाल रिथा खे हमेशा लाइ दफ़न कयो वञे। जेस्कम चेयरमैन सनान कुरेशी चयो आहे त न्यू जलालपुर केनाल गैर कानूनी मनसूबो आहे। ज़बरदस्ती केनालनि ज़रिए पाणी खयो वञे थो। सिंधु ते को बि केनाल क़बूल नाहे। दरिया बचाइण लाइ सिंध जा माण्हू तारीख़ी जुदोजहद करण लाइ तयार आहिनि। सिंध जे पाणीअ ते धाड़ो हणु बंदि कयो वञे।

0: जी मिंटन चंद मिंटन के फासले से घर पहुंचने वाली हुयस त मोटर बाइक्स से चार जना हुआ अननोन पर्सन्स हुआ चारन वट पिस्टल्स हुआ गन पॉइंट से उन्होंने मुखा स्नैचिंग कई डॉक्टर्स एतरा अनसेफ आयू जो पंज शहर खैपुर के अंदर पंज प्रोफेशन के नेस नथा कर सको असा पढ़ी लिखी कर इन शहर में इंजिले आया हूं असा कुछ भी कीमत भी कोई भी वारदात थी सके थी जस्टिस खपे एसपी खैपुर इमीडिएट एक्शन खड़े तो अज असा घर निकलें खौफजुदा आयो असा घर नथा निकली सको इन उम्मीद में असा कुछ थी न वे असा माँ भी बार बार बार बार इन फिक्र में होता है अल असा पांजे जॉब से पौता से या न पौता से असा इंसाफ खपे
1: खैरपुर के कंदकोट कश्मीर को बनाया वजे पर मां समझा तो इन सारे अमल में जेके खामोश दुरियन शामिल एसपी साहब उन वक्त ताई भी को मोटरसाइकिल फोरू गिरफ्तार न थियो
2: असांखे कुछ न खपे जेको वणे वञी कयो असांखे खैरपुर खे अमन खपे जेको भी को बैंक ते पैसा था खणी वञे उन खां पैसा पुरिया था वञनि असां बिल्कुल बि पाण खे गैर महफ़ूज़ था समझूं चवंदा असां दर्द रखूं था पर दर्द मूंखे नज़र कोन्दो जे असांखे अमन खपे
3: खैरपुर में वदंदड़ बदमनी ए लेडी डॉक्टर काफुर खिलाफ सिविल सोसाइटी लेडी डॉक्टर्स वकीलन ए शहरन की एहतजाजी रैली अगवाड़न तो फुर धाड़ा ए चोरी जो वारदातों मामूल बणजी वयू आहिन पुलिस मुकम्मल तौर नाकाम है अलाशहरी काफुर का कोरी गिरफ्तार करे कराची की अदालत में अनमोल उर्फिंग के खिलाफ सीटीपी में दाखिल मनशात केस की बुधनी जांच ऑफिसर के गैर हाजिरी सबब केस जो ज़िमनी चालान पेश न कयो वियो अदालत जांच ऑफिसर के गैर हाजिरी से सख्त कावड़ गुजार कंदे अमले के जांच ऑफिसर खिलाफ शिकायत दाखिल करने जो हुक्म दे छो केडी हेल्थ वर्कर्स जो मुतालबन की मंटा लाए गड़ी खुदाबश पुटो में शहीदन के मजारन आरो एहतजाज मुख्तलिफ इलाक में आयल औरतन लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के पीपीएचआई में जम करण खिलाफ मुजाहरो कयो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो चवण हो तो सेहत खाते में पीपीएचआई प्रोग्राम में जम करण वारो फैसलो नौकरी के तहफुज खिलाफ है सालन का अदूरहन इलाकन में बुनियादी सेहत जो खिदमतों सरंजाम दई रही आयो घड़ी खुदाबश में एहतजाज जो कारण यो है ये प्रोग्राम शहीद बेनजीर के दौर में शुरू किया वो हुकूमत यो फैसलो फौरी तौर वापस वटे असांके सेहत खाते के मुलाजिम तौर बरकरार रखो वे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन खिलाफ कराची में उम्मीदवार जो एहतजाज उम्मीदवार सीसीई 2024 के इंजीनियरिंग कैडर जा नतीजा फौरी तौर रद्द कर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नई सिंध जोन तक कई वे करप्शन में मुलविस जिम्मेवार एहतसाब कर वे सखर में सिंध बलूचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पानीकोट खिलाफ धरणो ग्लोब चौक सखर वट धरणो हणी रोड बंद कर वो बलूचिस्तान जो आबपाशी वारो वजीर सादिक उमरानी सूबाई वजीर सलीम खान कोसो ए बया धरणे वे हंध पौता अखबार सिंध।

0: नुकसान जी कुछड़ी वारन आबादगारन जे हिस्से जो पानी चोरी कर पियो वञे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
5: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: दिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर उधर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: मैक्रीनो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ स्क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो उधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सारे शहर के पानी के प्रा में मुअत्तल थी वही। हिरानी पोर्ट बंदर अब्बास था ईंदड़ वेंदर रस्तन ए रेलवे ट्रैक्स के भी तबाह कयो वियो। अमरीकी हमलन में गुलिस्तान सूबे में ईरान ए रूस के रेल जरिए गंढीदड़ पुल भी तबाह थी वही। अमरीकी सटका मूजिब ईरान के दिफाई ए नेवल निजाम के निशानों बढ़ाए वो है।

ईरानी हमलन जी तस्दीक करे छी। हाँ, जंग से गड गालियन वाली पॉलिसी खत्म थी वही। ईरान अमरीकी हमला जारी रहने की सूरत में तकरार के इलाकई जंग में तब्दील कर दी धमकी दई छी। ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई है त ईरान की हिकमत अमली जवाबी कार्रवाई से बदल है। दुश्मन मिसाइल फायर कन्द है तेहरान जो जवाब उन ताकतवर हों। ईरान जो बुनियादी मकसद दुश्मन के सबक सिखण ए जंग जो खात्मो है। गडियल कौमन में ईरान के नुमाइंदे पारा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमला बंद करण जो मुतालबो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी है आखिरी साह तई वतन जो दिफा कयो वेंदो। अमरीकी हमलन में शहीद थियल ईरानियन जो खून जया थियण न डींदासीं।

0: ईरान टेमला वधाण की तैयारी अमरीका वधिक रिफ्यूलिंग जहाज इसराइल माणे छ्या रूसी मीडिया मूजिब अमरीका तरफा ईरान खिलाफ जारियत वधाण की तैयारी कई पई वे ईरान में शहरी ढांचे के निशान पाण बाद रिफ्यूलिंग जहाज मोकलिया व्या नायब वजीर आजम इसाकदार ए कोयती परडेही वजीर शेख जराब जाफर अल अहमद अल सपा विच में फोन ते राबतो परडेही तर्जुमान मूजिब बिन्ही अगवाणन खत्े की ताज़ी सूरत हाल ते ख्यालन की डे वट कई कोयती परडेही वजीर पारा ईरान के हमलन ते सख्त गणती ए इस्लामाबाद मुफामती याददाश्त नामे ते मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद जाहिर खत्े में अमल लाए पाकिस्तान की तामीरी ए सालिसी बारे किरदार की साराह इसाकदार जंगबंदी के वायदन की पासदारी ए चिकटाण वधाईंदड़ कदमन का पासो करण अंटर न्यूयॉर्क में मौजूद नायब वज़ीर आज़म इसाकदार गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात कई इलाकाई आलमी मामलों से गाल बोल सिक्योरिटी फोर्सेस बाना में दहशतगर्दी की वही कोशिश नाकाम बनाए छी बारूद से भरल गाड़ी धमाके का पे ही तपा कार्रवाई में एक खाजी जहनम भीड़ो पंज दहशतगर्द मारी वह सिक्योरिटी जरिए मूजिब गाड़ी में धमाकेदार मवाद इम्कानी तौर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल थियण हो घरू वजीर पारा फोर्सेस के भेटा पेश पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी से बलोचिस्तान के वे वजीर सरफराज पुख्ती की मुलाकात सूबे की इंतजामी दहशतगर्दी की पीपल्स पार्टी जो दहशतगर्दी के हवाले से पेरे ढी का वाजह मौकफ है वो दहशतगर्दी खिलाफ शीहे की भित जिया बीठल रहा बलोचिस्तान के सियासी मसलन जो वायद हल गाल सियासी पार्टी से सियासी गाल यकीन रखन था सरफराज बुख्ती आगत साने की जांच लाए पोएरन से जुडिशियल कमीशन कायम नाम के हवाले से जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पिण कोठाई वी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GAFM 91.6 जो आवाज बुधंदा रहो
4: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: है
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान ते हमला वधाइण जी तैयारी, अमरीका वधे के रिफ्यूलिंग जहाज इसराइल उमाणे छड्या। रूसी मीडिया मुजिब अमरीका तैयारी कई पई।